महिला मैंने पहले से बंडल पे बंडल मेरे को धुए की कमी नहीं, घर वाले साथ मेरे को गरज नहीं, किसकी भी 500 की जॉर्डन तेरी फर्स्ट कॉपी, हम मेरी ऑफ ट्रिप भविष्य तो बिठाती सुपारी, भाई बोले खुद को चौकी तक आ रही नहीं।